सात रे भाई डोरी अम्मा एक बेनड़की आले गी क्यों धरूडे क्यों परणाई रे अम्मा मिनो दिवे